0: आप एक छोटा सा अपना टेस्ट करवाएं और उसमें फिर ये है कि जब सामने आ जाती है चीज के ये बैक्टीरिया है पॉजिटिव है तो फिर इसका इलाज करें, फिर खाने पीने में थोड़ी एहतियात रखें और जिस तरह मैंने कहा इसमें आप देसी चीजों से ले सकते हैं, बाज लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें मलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है,
1: ठीक है,
0: और दूसरा आप राल सफेद है और आंबा हल्दी है, गोंद कीकर है, ये चीजें फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि इसमें जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आप इसको बेहतर तौर पे और जल्दी रिकवर कर सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो बाकी मौलिक फिर जिस तरह है वो आपको जो हिदायत करता है आपने उसके मुताबिक चलना होता है तो आप मर्ज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस पे, बल्कि मर्ज आप पे हावी नहीं होता,
1: ठीक है,
0: आप मर्ज पे हावी हो जाते हैं।
1: किम साहब ये बताइएगा कि जो एच पाइलोरी है ये देसी तरीका इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है?
0: बिल्कुल हो जाता है और इसकी कई मिसालें हैं, आप बिल्कुल इसको आप टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसका देसी तरीके से इलाज करें, सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा नहीं 20 से 30 दिन आपने देने हैं, इसके बाद आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से दोबारा जाकर फिर टेस्ट करवा लें,
1: ठीक है,
0: वो आपको नेगेटिव ही रिपोर्ट देगा। दूसरा यह है कि आदमी या मरीज जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो खुद महसूस करेगा कि मेरे पेट में अब वो तनाव नहीं है, वो टाइटनेस नहीं है, वो जलन नहीं है, वो दर्द नहीं है, या मैं कोई भी चीज खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, वो चीज नहीं है।
1: हाँ
0: ये जरूर है कि बस उसे थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ती है, परहेज को लाजमी रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो रिपोर्ट जो आएगी वो मुस्बत आएगी।
1: हाँ जी, सो बिल्कुल खवातीन हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी तामुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल खवातीन हज़रात, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपकी खिदमत में आपका मेजबान और हकीम साहब हाजिर हैं। सामिन इकराम, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो बिल्कुल हकीम साहब ने बात की एच पाइलोरी पर, यानी कि मैदे के जख्म के बारे में। सो बड़े अच्छे तरीके से हकीम साहब ने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। सो जनाब, अगर आपको भी मैदे का जख्म का मसला है, एच पाइलोरी का मसला है, तो आज ही तशरीफ लाएं।
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
4: You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू भाई? क्रीम एंड फेस वॉश आया है कि नहीं? सबको सलाम, आई एम जुया जुया जमा खुरी नोटेंशन डायमंड फॉर्मूला क्रीम हरो वाली दीसी वीरसरा वेजमसी फेस वॉश हरो वाले दशा मिला विशेषा

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagam 97.4 Paharpur, Global FM 91, Dera Ismail Khan, and Radio Aman 88.4 Dark. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है जनाब? ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की। अमरीकाम एक नए दिन के साथ, एक नए नई तारीख के साथ, आज बुध का दिन है जनाब, 24 रबी सानी है, 7 अक्टूबर 2026 और अस्सू की 22 तारीख है। जी जनाब, आप अपने शहर के एफएम के ऊपर जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान का हर रोज का मामूल का प्रोग्राम और आज का नया और बराह रास्त प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं जनाब, जिस प्रोग्राम का नाम है केसन टी टाइम शो। जी जनाब, टी टाइम बोले तो जी जनाब, टी टाइम का मतलब होता है चाय का वक्फा, चाय का दौरानी के इस वक्त में जनाब आप लोगों के लिए हम एक जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें ढेर सारी मालूमात होती है आप लोगों के लिए, ढेर सारी मजे मजे की बातें होती है और ढेर सारी केसन की बातें होती हैं, क्योंकि जनाब केसन की बातें जो है वो सेहत की बातें होती हैं, केसन की बातें जो है वो खूबसूरती हुस्न और खूबसूरती की बातें होती हैं। तो आज की नशीस भी बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, और अगर आज का शो आप भी जी जी बिल्कुल कान लगा के सुनेंगे, हाँ जनाब कान लगा के सुनेंगे, तो ये जो कानों में आवाज पड़ेगी ना, ये कहीं ना कहीं रुक कर आपके दिमाग के अंदर आपके ऊपर असर जरूर करेगी, क्योंकि जनाब जो सच्ची बात होती है, जो खरी बात होती है, और वो जो आपके दिमाग को लगने वाली बात होती है, वो जरूर कहीं ना कहीं आपके जहन के किसी कोने में रुक जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो दिमाग दिया हुआ है ना, दो कानों के दरमियान में ये जो अल्लाह ताला ने दिमाग रखा हुआ है, ये मैग्नेट का काम करता है, ये मकनतीस के काम करता है, और जो भी सच्ची अच्छी और खरी बात होती है ना, आपका दिमाग इसको कैच कर लेता है, इसको अपने दिमाग के किसी कोने में मेमोरी के अंदर हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। तो केसन की बातें हमेशा आपके दिमाग के अंदर स्टोर होने वाली होती हैं। तो देखते हैं कि आज हमारी बातों में से, हमारे इस पूरे एक घंटे के शो में से, आप कौन सी बातों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करते हैं।

0: जी जनाब, स्किन क्लियर फार्मूला जो है वो इस वक्त आप लोगों के लिए हमने पेश कर दिया है, जो कि सीरम्स पर मबनी फार्मूला है। और सीरम से बनी हुई क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आम क्रीमों से ये हटकर लगेगी। और कौन कौन से सीरम हैं जिनको हमने इस क्रीम का हिस्सा बनाया है? जी जनाब, एजलिक एसिड ये सीरम है, सीरम की सूरत में होता है, एजलिक एसिड का सीरम, हेलरोनिक एसिड का सीरम, रेटिनॉल एसिड का सीरम, और इसके साथ साथ जी जनाब एक और सीरम जो कि ट्रांजेमिक एजलिक रेटिनॉल और हेलरोनिक एसिड चार से मिलकर बनी हुई ये क्रीम है, जो कि केसन का फार्मूला है, केसन स्किन क्लियर फार्मूला क्रीम विद इन्फ्यूज्ड सीरम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे जनाब?
1: अहमद हसन।
0: अहमद हसन, कितना लेंदे पे वैसे पहाड़पुर या टांग या डेरा?
1: डेरा दे विच कुरेशी मोड़ दे करीब।
0: कुरेशी मोड़ कर लेने पे बिरा की में हाल है, ठीक ठाक
1: जी? आज तो साकू पहले दफा कॉल करे ना सिया।
0: अच्छा जी, पहले दफा कॉल करे ने पेवे तसा तो को वेलकम मार्क्सो अपने प्रोग्राम दी। चाय पिलाऊं तो आको? मेरे को चाय बची पई हाल।
1: नहीं मेहरबानी।
0: प्रोग्राम सुनदे रहंदे वे रोजाना?
1: जी हां, करीबन 2 महीना
0: को सुनदे पेवे ते कोशिश आई तो सकी थी कॉल मिलावण दी, दिल नहीं आदा तो को मेरे नाल गाल करण ते बराह रास्त
1: जी।
0: मैं के तुम्हारा दिल नहीं आता 2 महीने को सिर्फ सुन दे वदे वे कॉल नवे मिले ने
1: जी। अब सुन रहा कि बस कॉल कर निकली थे ना।
0: अच्छा चलो, अच्छी गाल, चलो अच्छी
1: गाल कीते से हुंदा भी कॉल हुन मिली।
0: चलो अच्छी गाल है, ये दामी कॉल तुम्हारी लग गई है। ते तुसें करीमा दे शौकीन हुए? करीमा लेने होंदे वे जेरे रंग को गोरा करें ते खूबसूरत बनावे, या करीमा को दूर दूर ही वे तुसा?
1: नहीं
0: फिलहाल इस्तेमाल कर लेकिन इंशाल्लाह। शादीवादी नहीं की थी हाल तक?
1: लेकिन शैम्पू
0: हाँ बिल्कुल खुशकी वास्ते सारा तेल ते शैम्पू तुसे गिनो केसन दा, ठीक है जनाब? केसन हेयर ऑयल ते केसन शैम्पू, खुशकी खारिश सारे चीजें खत्म थी वैसन बिल्कुल
1: जी हाँ,
0: ठीक है जनाब? केसन दा शैम्पू ते तेल रात को तेल ला के समो ते सवेरे वाला के शैम्पू नाल धोसो तो इंशाल्लाह जे रहे ना तुम्हारा मसला हल थी वैसी, ठीक जी? क्या बिरा डेरे तुसे चुगले दे नाल, चुगले दे नाल पहुंच के चुगले दी पहुंच वंजो, या बाकरी बाजार दे विच राजा जनरल स्टोर है, हाजी गुल जनरल स्टोर है, ठीक है जनाब? ता इत्थे तो को मिल वैसे ने थे आके, ठीक ठीक है खान जी जनाब। थैंक यू सो वेरी मच जनाब, आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तीनों रेडियो स्टेशन टांक डेरा और पहाड़पुर से एक साथ सुन रहे हैं जनाब। और केसन नशे पाकिस्तान हर आने वाले दिन में आगे बढ़ रही है, और ये आगे बढ़ना तरक्की की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का ढेर सारा तामून है। हैट्रिक की है केसन ने, इससे पहले चेहरे के लिए हमारी दो करीमें पहले से मौजूद है जो की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है जनाब? जिसमें एक हमारी जाफरानी क्रीम है, तो इस चीज का अंदाजा लगाइएगा कि हम आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। जैसे हम साबुन की बात करें तो केसन के 7 किस्म के साबुन है, राइस का साबुन है, मिल्क की गोट मिल्क का साबुन है, ठीक है जनाब? इसके अलावा उपटन का साबुन है, ग्लूटा वाइट का साबुन है, कोजिक एसिड के साबुन है, नीम और टी ट्री का साबुन है, ठीक है जनाब? ये सारे किस्म के साबुन जो है वो आपकी स्किन की बेहतरी के लिए है, आपकी स्किन को प्यारा बनाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए कोल्ड क्रीम भी लॉन्च कर दी है, ठीक है जनाब? जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ जो है ऑयल शैम्पू फेस वॉश हमारे 4-5 किस्म के हैं, और जब हम क्रीमों की बात करते हैं सिर्फ फेस की हमारे 3 क्रीमें हो गई हैं। ग्लूटा वाइट को हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि जो कम उम्र लड़कियां हैं, कम उम्र लड़कियों को भी व्हाइट होने का शौक होता है, ठीक है जनाब? और हमने उनके लिए सेफ फार्मूला बनाया है जिसका नाम है केसन ग्लूटा वाइट क्रीम, ठीक है जनाब? 350 रुपए की ये क्रीम आती है। ये नहीं है कि बड़े लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, शादीशुदा भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शादीशुदा वो औरतें हैं जिनको छाइयां नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी रंगत सांवली है तो ग्लूटा वाइट को इस्तेमाल करें। टीन एजेस जो लड़कियां हैं 12-13 साल 14 साल से 20 साल के दरमियान, उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए हमने अलग से फार्मूला बनाया है जो कि ग्लूटा वाइट के नाम से, वो इस्तेमाल करें। जाफरानी करीम है, हम कहते हैं कि इसको भी छाइयों के लिए इस्तेमाल करें। और अभी हमारी एडवांस सीरम पर मबनी क्रीम आ चुकी है जिसके नाम है केसन स्किन क्लियर फार्मूला, जो कि सीरम इन्फ्यूज क्रीम है और चार किस्म के, आप गूगल से पूछें भाई, खलील भाई ने क्रीम बना ली है और जिसे वो सीरम वाली क्रीम कह रहे हैं और जिसके अंदर चार किस्म के सीरम हैं। इस वक्त कुछ कंपनियां जो सीरम ऐड कर रही हैं वो एक ऐड करती हैं, या क्रीम के साथ एक छोटा सा पाउच होता है उसमें लिखा होता है कि ये सीरम है इसको इस्तेमाल करें, यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा सीरम ऐड करके आप लोगों को दे रही हो। वजह क्या होती है कि खर्चा आता है और लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों ने कहा कि महंगी चीज हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जबरदस्त चीज होनी चाहिए। तो हमने पहले महीने के लिए इसकी कीमत 450 रुपए रखी है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अगले महीने हम इसकी प्राइस को अप करेंगे, ये सिर्फ इसलिए कम की है, 450 रुपए इसकी कीमत रखी है ताकि हर बंदा इसको खरीद सके और जब उसे समझ आ जाए एक दफा कि भाई ये क्रीम और आम क्रीमों में क्या फर्क है, तो फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अप करेंगे, क्योंकि कॉस्टली, ठीक है ना। इसके अंदर ये जब आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे ना, स्किन क्लियर फार्मूला, आपको खुद ये क्रीम बताएगी कि भाई वाकई ये एक प्रीमियम क्लास की क्रीम है और इसकी फील और सुबह उठकर चेहरा धोने के बाद जो चेहरे की नौयत आपको महसूस होगी वो फिर देखने वाली होगी। कहाँ कहाँ पर हासिल कर रहे हैं, जफराबाद में हाजी जरी जनरल स्टोर पर तहसीन भाई खुद मौजूद थे और ये वहां पर मौजूद होते हैं, इनके भाई हाजी अब्दार खेल भी होते हैं, तो यहाँ से भी आप जफराबाद में हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ऑफर दे दी है कि हर प्रोडक्ट 50 रुपए सस्ती देंगे, ठीक है जनाब। केसन के तीनों क्रीमें जो है आपको हाजी जरी जनरल स्टोर के ऊपर 50 रुपए सस्ती मिलेगी। इसके अलावा हमारी क्रीम अगर आप मौजूद हैं आड़ा रोड के ऊपर, तो मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने है जनाब खान कॉस्मेटिक्स, ठीक है जनाब, आप यहां से हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, खान कॉस्मेटिक आड़ा रोड। इसके अलावा रहमान आशियाना बेकरी है, वहां पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा शेख यूसुफ अड्डे पर मौजूद हैं, तो जनाब यहाँ पर है जाहिद शॉपिंग सेंटर और वसीम जनरल स्टोर, महमूद जनरल स्टोर, सीआरबीसी चौक जनाब, वहां पर भी आपको हमारी ये क्रीम स्किन क्लियर फार्मूला मिल जाएगी, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ डे टाइम क्रीम है जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का फार्मूला है, फेयरनेस क्रीम है, लवली टाइप, फेयर लवली टाइप ये क्रीम है और इसको डेली इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो झुरियां खत्म होती हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर रहती है, डार्क स्पॉट्स फ्री रहती है, क्योंकि विटामिन B3 से इसको बनाया गया है और B3 का बड़ा रोल होता है जनाब दिन के वक्त। इसके अलावा UV प्रोटेक्शन देती है, सन ब्लॉक का काम भी करती है, तो डे टाइम क्रीम जरूर, ये दो क्रीमें तो मस्ट है। तीसरी क्रीम ऑप्शनल है क्योंकि वो सर्दियों के लिए है और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, आपका चेहरा खुश्क हो जाता है, हाथ, आपके बाजू, गर्दन खुश्क हो जाती है, तो आप कोल्ड क्रीम भी साथ में लीजिएगा। अदरवाइज दो क्रीमें जो है इस वक्त आप लोगों के लिए हमारी, एक नाइट क्रीम जिसका नाम है केसन स्किन क्लियर फार्मूला जो कि सीरम से पर बनी है, और दिन के लिए डे टाइम क्रीम केसन लवली फेस। जी जनाब महमूद जनरल स्टोर सीआरबीसी चौक पर, यहाँ पर भी हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। इसके अलावा शेर वली कुंडी जनरल स्टोर, नईम कुंडी जनरल स्टोर, डोहतर अड्डा, यहाँ पर भी मेरे ख्याल में के पहुंच चुके हैं प्रोडक्ट। और इसके अलावा जो है पहाड़पुर में कहाँ कहाँ नवीद कॉस्मेटिक स्टोर।

इंसानी जनाब आपका ख्याल रखती है कंपनी, और यही वजह है कि आपको इतनी ज्यादा वैरायटियां इस्तेमाल करने को मिलती हैं। अच्छा जी, यूसुफ अड्डे के ऊपर जाहिर शॉपिंग सेंटर पर भी आपको मिलेगा, महमूद जनरल स्टोर सीआरबीसी पर भी, और इसके अलावा दरबार वाली गली, दरबार वाली गली के अंदर है जनाब, क्या नाम है उनका, उमर जनरल स्टोर इब्राहिम भाई के पास भी मिलेगा। बनू चुंगी के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर है कराची कॉस्मेटिक शकील भाई के पास, वहाँ पर भी आपको हमारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। जल्दी से एसएमएस की तरफ जाते हैं, कॉल्स आप लोगों की बहुत सारी हमने ले ली हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ और हमें मैसेज करके क्या पैगाम दे रहे हैं। ठीक है जनाब, डेरा इस्माइल खान में हर जगह केसन शॉप अकबर प्लाजा पर मौजूद है, वहां पर ऑलरेडी आपको बाजार से चीजें सस्ती मिलती हैं, तो ये तीनों क्रीमें भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी कीमत में मिलेंगी। जनाब एक बहन ने मैसेज किया हुआ है जो अपने गांव को, पहले उन्होंने मैसेज किया था कि वो गांव जब भी जाती हैं 7-8 हजार की क्रीमें लेके जाती हैं, तो उन्होंने भाई का मैसेज किया हुआ है। तो भाई जी आखे है जनाब, सलाम भाई क्या हाल है, मीसम खान बात कर रहा हूँ, मीसम की कॉल भी हमें आई थी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ जनाब, एक और विनर जो इस महीने की विनर थी हमारी, जो पैकेज इन्होंने हमसे विन किया है। अच्छा जी, कुछ लोग केसन शॉप पर आए थे और उनको अकबर और जारा परफ्यूम नहीं मिले, तो भाई वो तशरीफ ले आए। ठीक है जनाब, जिन जिन लोग चक्कर लगता है, हमें भी बाजू का जो है बुरा लगता है, शर्मिंदगी होती है कि आप इतनी दूर से आते हैं और को कोई चीज स्टार्ट हो जाए, लेकिन क्या करें, कंपनी है और इतनी ढेर सारी प्रोडक्ट हैं, और कोशिश हमारी भरपूर होती है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट ना हो, लेकिन फिर भी बाजू का जो है प्रायोरिटी होती है, बेसिकली हम उस चीज को सबसे पहले अवेलेबल करा रहे होते हैं जो मोस्ट रनिंग होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जनाब, उस प्रोडक्ट को हम कभी भी शॉर्ट नहीं होने देते हैं और उसका एक्स्ट्रा से भी हमारे पास जो स्टॉक होता है वो मौजूद होता है, लेकिन बाज़ुकात कभी कभी कुछ चीज शॉर्ट हो जाती है, जैसे अकबर और जहरा बड़े परफ्यूम शॉर्ट थे हमारे। ठीक है जनाब, वो उम्मीद है कि आ चुके हैं, तो आप जिन जिन लोगों ने भाई खरीदने थे वो जरूर तशरीफ लाएं। और आज एक खुशबू वाले से मुलाकात हुई, खुशबू वाले से, ठीक है ना, तो कह रहे थे कि कैसे आपके परफ्यूम चल रहे हैं ना, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, तो कह रहे थे कि रेट क्या रखा हुआ है, तो मैंने जब बताया ना 1500 रुपए, तो हंसने लग गए, 1500 रुपए में तो क्या कमा रहे हो इसमें। ठीक है, वो खुद खुशबू बनाने वाले और बेचने वाले हैं, तो कहते कैसे वारा करते हैं 1500 रुपए में एक डब्बा, उसके अंदर बोतल परफ्यूम की, और परफ्यूम भी आप जो बता रहे हैं कि जो परसेंटेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टमर इतना ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि हमें 50-50-100 भी बचते हैं तो हमारे लिए काफी होते, तो वो हैरान हो गए कि भाई अभी तो 3000 से नीचे अच्छे वाला परफ्यूम नहीं है, हम खुद भी जो बनाकर देते हैं ना वो 2500-2700 से कम आज तक हमने बनाया भी नहीं है, तो वो हैरान हो गए। तो भाई इस वजह से भी पसंद किया जाता है कि आपके जेब के ऊपर भारी नहीं है हमारे परफ्यूम। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ के युहाया खान, कैसे हैं आप, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, अल्लाह मजीद कामयाबियां दे। बहुत खुशी होती है केसन को कामयाब होता देखकर। और सर जी, केसन अकबर परफ्यूम कब तक रीस्टॉक होगा, और अर्जेंट बेसिस पर मुझे जरूरत है, 1-2 दिन तक अवेलेबल हो जाएगा, बल्कि हो गया, अगर आप शाम

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशीला, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन्फ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: चलते जाएंगे कि यार हम चलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, और क्योंकि पट्टे थकेंगे
1: ऐसी बात
0: तो
1: है,
0: फिर टांगों में दर्द होना लाजमी है। अब नमकियात पूरी करें अपनी, अपने कैल्शियम मैग्नीशियम और उसके अलावा जो है पानी, इनको अगर आप पूरा रखते हैं तो आप काफी हद तक इस चीज से बचाव कर सकते हैं और अपने टांगों के दर्द को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चाहता है, बहुत मेहरबानी आप तशरीफ
0: लाए, बहुत शुक्रिया,
1: समय के सवालों के जवाब दिए, और ये बता दीजिएगा कि कल बरोज जुमेरात आप मौजूद होंगे क्लिनिक में।
0: हाँ इंशाल्लाह, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक क्लिनिक खुला होगा, और जो भाई या बहन अगर आना चाहे, मशवरा करना चाहे, तो बिल्कुल आके मशवरा भी कर सकते हैं और अपना मसला बयान भी कर सकते हैं, और उसका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका प्रॉपर तरीके से उसका हल भी दें।
1: बिल्कुल, एक मैसेज यकीन सब आया हुआ था, लेकिन उनको कल जवाब देंगे। एक भाई बहन कह रही है कि अरकान का मसला है, तो कल आपको इसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह इलाज।
0: जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इसके बारे में तफसील से बात हो जाएगी।
1: बिल्कुल, बहुत मेहरबानी यकीन साहब, अल्लाह हाफिज़। सो बिल्कुल खवातीन और हजरात, आप लोगों ने गुफ्तगू समाअत फरमाई देसी तिब के माहिर हकीम हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब के। बिल्कुल जनाब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और 30 सालों का तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड में, अपने काम में। सो कल बरोज़ जुमेरात हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। आप एड्रेस नोट फरमा लीजिए, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। बिल्कुल जी, आपका कोई भी मसला है, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाने में। आपके मैदे के मसाइल हैं, गुर्दे के हैं, दर्दों के हैं, ब्लड प्रेशर है, अबावसीर है, दिल के मसाइल हैं, जो भी आपको मसला है, कल बरोज जुमेरात सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम साहब अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइएगा, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और प्रोग्राम के बाद हकीम साहब से राब्ता करने के लिए नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, एंड अस्सलाम वालेकुम।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο έγινε πάντα σαπάρ, σε δετά σε έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκανα, από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα είμαι ζητή, μου έχω κόρτα, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορύβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα κίλε με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα, ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορτάλ σε ρικρέτη, ω τον κούρβαλα να χωστούλτι.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों उदार तो हुई या कि पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सब युक्सली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पड़ी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یا دای دار تاویی چه داو موتا چیرتا ملاویزی
1: تار کنا داو تو داپا بانگول شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سار او در تا ملاویزی